0: Agriculture Minister Julie Collins said in televised remarks. Sinaloa Governor Ruben Rocker indicted by US federal prosecutors on drug trafficking, bribery and cartel protection charges again requested a leave of absence from office on Saturday, days after defiantly reclaiming his post. Rocker's return was not well received by either the Mexican government or the ruling Morena Party, which accused him of prioritizing his personal interests over those of the public. Earlier on Saturday, President Claudia Sheinbaum warned on X that power without principles becomes arrogance and no personal interest can be above the people or the nation, intensifying the political firestorm without directly naming Rocker. Echoing her words, Rocker posted a statement on X saying that Sinaloa, the nation, and the transformation movement are above all else. Rocker, who's aged 77, a member of Sheinbaum's Morena Party, returned to office on Friday after more than 3 months on leave following U.S. drug trafficking charges. In April, U.S. prosecutors alleged Rocker and 9 other current and former officials conspired with a faction of the Sinaloa cartel known as the Los Chapdos, helping it to traffic drugs into the U.S. in exchange for political support and bribes. 7 people, including 2 police officers, died in a car crash in northeast England on Saturday after a car heading the wrong way down a major road hit a marked police armed response car, the local police force said. Cleveland police said the incident occurred at 3:39 a.m. local time near the South Bank area east of Middlesbrough, and all occupants of the 2 vehicles died at the scene. This is an incredibly sad day for Cleveland, Cleveland Police Chief Constable Victoria Fuller said. The police force said it had formally identified the passengers in the other car, a Volkswagen Passat, and was contacting their families. Fuller named the 2 dead officers as Police Constable Matthew Blage, aged 37, and Tom Clough, aged 38, describing them as brave officers who didn't return home to their families at the end of their shift. Prime Minister Andy Burnham also released a brief statement expressing his sadness at the incident, which, as usual in such cases, will be reviewed by Britain's Independent Office for Police Conduct. Several thousand people gathered for the annual Pride Parade in Saxony-Anhalt's capital, Magdeburg, on Saturday to show support for LGBT rights ahead of an election in the eastern German state that the far-right alternative for Germany is expected to win. This year's Christopher Street Day celebration is taking place amid heightened security after last month's deadly attack on Berlin Pride. AfD is comfortably ahead in polls leading up to the September the 6th vote that could see the first far-right party take power at a state level since the Nazi era. In its Vision 2026 election manifesto, the AfD advocates for what it calls the traditional family model of a man and a woman as the societal norm in schools, even as National Party co-leader Alice Weidel is raising 2 children with her female partner.
1: Metro Plus weather.
0: Mainly cloudy with a few showers, hot with sunny intervals during the day, isolated thunderstorms later, moderate southwesterly winds, temperatures ranging between 27 and 32 degrees, relative humidity ranging between 70 and 95. 5%. The outlook showers will increase with squally thunderstorms in the next couple of days. It'll be windier in some areas. And that's the weather from Metro Plus, your Connect.
2: Looking for a part-time job over the summer holidays or after you graduate? It's cool to pick up some cash and gain work experience, but you've got to think it through and avoid doing dangerous jobs. My friend got hurt working last summer and he's not fully recovered yet. A few months' pay isn't worth it, you know. So be sure the job is something you can do safely. Call the Labour Department hotline 2559 2297 and check it out.
1: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
3: Namaste, sat sri akal, salam, kidda ho ji, sare vadiya, pa ji, bahut vadiya. Aaj hai 21 August 2026. Hamare paas hai 1, 2, 3, 4, 5 announcement. To shuru karte hain ji hamara show with our very first announcement. Ye hai admission arrangements for nursery classes in kindergartens for the 2027-28 school year. Government ne 2017-18 school year se kindergarten education scheme shuru kiya hai. Is scheme mein join kiye hue kindergartens sirf bachcho ko admit karte hain jinke paas valid registration documents hain, yani registration certificate for kindergarten admission ya kindergarten admission pass. अगर आप अपने बच्चे को 2027-28 स्कूल ईयर के लिए स्कीम केजी में नर्सरी क्लास में डालना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच एजुकेशन ब्यूरो से इलेक्ट्रॉनिक आरसी या एपी के लिए अप्लाई करना जरूरी समझें। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो पेरेंट्स जिनका बच्चा हांगकांग रेजिडेंट है 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पैदा हुआ हो और 2027-28 में K1 क्लास ज्वाइन करेगा एप्लीकेशन ऑनलाइन IM स्मार्ट ऐप या EDB की वेबसाइट से कर सकते हो हार्ड कॉपी फॉर्म और गाइडेंस नोट्स EDB वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस से ले सकते हो कोई सवाल हो तो ऑफिस आवर्स में EDB के किंडरगार्टन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 2 से कॉन्टैक्ट कीजिए 3540-6808 या 3540-6811 ओके अगला जो अनाउंसमेंट है दिस इज सर्विकल स्क्रीनिंग हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं बहुत सी महिलाओं जिनको HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण नहीं दिखते याद रखो चाहे कोई लक्षण ना हो HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है स्क्रीनिंग करवाने के लिए मटर्नल या चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स वेमेन वेलनेस सैटेलाइट्स फैमिली डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग भी ले सकते हैं नंबर है 3166-6631 जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट में HPV सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो गई है हांगकांग आइलैंड के नंबर है 2855-1333 कालून के हैं 2855-1222 न्यू टेरिटरीज के 2851-1722 ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.cervicalscreening.gov.hk पर जा सकते हैं अपना ख्याल रखो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ ओके बढ़ते हैं हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर दिस इज़ फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम शुरू करने से पहले अपना स्टेटस क्लियरली समझ लो आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड कई चीज़ें मैटर करती हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट राइट्स और बेनिफिट्स स्टेटस सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहा है तो आप मना कर सकते हैं अगर आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लेंट हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2815-2200 बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट पर दिस इज हेल्थ टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रोक सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन याद दिलाता है बहुत गर्मी में हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक से बचिए सेफ रहने के लिए रेगुलर पानी पियो, कैफीन और अल्कोहल से बचो, हल्का और ढीला कपड़ा पहनो, हवादार या एयर कंडीशनड जगह में रहो, बाहर ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करो, आउटडोर एक्टिविटीज़ सुबह या शाम को प्लान करो, आउटडोर वर्कर्स रेगुलर ब्रेक लो और छाँव में आराम करो, बच्चे बुजुर्ग प्रेग्नेंट महिलाएं और क्रॉनिक बीमारी वाले लोग ज़्यादा केयरफुल रहें, बच्चों को कभी भी बंद गाड़ी में अकेला मत छोड़ें, यूवी इंडेक्स हाई हो तो सीधा धूप से बचो, SPF 30 या उससे ऊपर सनस्क्रीन लगाओ, यूवी ब्लॉकिंग सनग्लासेस पहनो और छाँव में रहो, अगर चक्कर आए, सिर दर्द हो, उल्टी जैसा फील हो या कन्फ्यूजन हो तो तुरंत आराम करो और डॉक्टर से मिलो, गर्मी में अलर्ट रहो, कूल रहो और अपना ख्याल रखो। ज़्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जाए। ओके, आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर, एंड आफ्टर दैट वी गोना प्ले ऑल द सॉन्ग्स इन वन गो। ओके, दिस इज वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम, जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउसहोल्ड के नाम पर अप्लाई होता है, पूरा हाउसहोल्ड हांगकांग रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक महीने में एक से ज़्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंस के टाइप्स हैं, टोटल 144 आवर्स या उससे ज़्यादा तो वो है बेसिक अलाउंस, 168 आवर्स या उससे ज़्यादा वो है मीडियम अलाउंस, 192 आवर्स या उससे ज़्यादा वो है हायर अलाउंस। हाउसहोल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट, थ्री क्वार्टर रेट या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक के लिए 1150 हांगकांग डॉलर पर मंथ, मीडियम के लिए है 1380 हांगकांग डॉलर पर मंथ, हायर के लिए है 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ। हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है, उसका फुल रेट है 1610 हांगकांग डॉलर पर मंथ पर चाइल्ड। जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स, इनकम, एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2558-3000। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर मी टुनाइट। तो आई एम गोना जस्ट लिस्ट आउट द नेम ऑफ सॉन्ग्स एंड हु रिक्वेस्टेड इट। तो पहला गाना है जी, अनोनिमस ने रिक्वेस्ट किया, इट्स काला काला तारा बाय कुलबीर जिंजर। देन वी हैव गॉट अफाई हु रिक्वेस्टेड जुत्ती बाय नोमी जट। देन वी हैव गॉट बिलाल हु रिक्वेस्टेड आन मिलो बाय गुलाब सिद्धू। देन वी हैव गॉट खान भाई हु रिक्वेस्टेड परचे बाय गिल मनुके। देन वी हैव गॉट योगी जट हु रिक्वेस्टेड कट बाय वतन साही। देन वी हैव गॉट सनी सिंह हु रिक्वेस्टेड 7 days बाय लाडी छलजा। Then we've got Malik Zain, who requested Don't Worry by Karan Aujla. Then it's Happy Keron, who requested Saga of the Khadkus by Prem Tillo. Then we've got Yaseen and Sharia, who requested Cut by Ram and Prince Randhawa. Then we've got Kalpana, who requested Diff by Tyson Sidhu. Then we have Amrit, who requested Parche by Karaj Randhawa. Then it's Rajveer who requested Self-Trained by Khan Bani. Then last but not the least, Amrit Gill who requested Off-Roading by Khan Bani. Alright guys, that's it for tonight. Milte hain ji aapko next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji chill karo, tension na lo, te chardi kalach raho. Rab rakha, good night and goodbye.